ज्ञान रहकर सिंसियरिटी को, अपने इंटेंशंस को इतना पाक रख के हर अमल इंसान का अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए। अच्छी नीयत के अपने फ़ायदे हैं, अच्छी नीयत के अपने फ़ायदे हैं। एक अमल मुमकिन है इंसान को नजात दे जाए, एक अमल मुमकिन है इंसान को नजात का ज़रिया बने। और पाँचवीं नसीहत कर दूँ और कंक्लूड करो अपनी किसी डिस्कशन को कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मौलाए कायनात की तरफ खिताब करके, या अली इदा रायतन नास यश्तगिलूना बेउयूबिन नास फश्तगिल अंता बेआइब नफ्से। पैगंबर इस्लाम फरमाता है अली, जब तुम ये देखो कि लोग दूसरों के ऐब, दूसरों के फॉल्स, दूसरों की कमियाँ गिनने में मसरूफ़ हैं, तुम अपने ऐबों की तरफ तवज्जो। इतना आसान है दूसरों के बारे में ये कहना कि वो अच्छा नहीं है, और कितना मुश्किल है अपने बारे में ये कहना कि मेरा अमल भी तो अच्छा नहीं। कितना आसान है दूसरों को ये कहना कि वो नमाज नहीं पढ़ता, और कितना डिफ़िकल्ट है अपने बारे में ये कहना कि मैं क्यों नमाज नहीं पढ़ता। कितना आसान है दूसरों की कमियाँ, मिस्टेक्स, सिंस को उछाल देना, बयान करना, डाल देना सोशल मीडिया में, और कितना डिफ़िकल्ट है अपने बारे में लिखना और अपनी कमियों को बताना। छठे इमाम फरमाते मेरा बेहतरीन दोस्त वो है जो मुझे मेरे आयब बताए। आयब बताओ तो आदमी नाराज़ हो जाता है, नहीं उसमें हिम्मत है किसी का आयब बताए, किसमें हिम्मत है, शुजात है कि वो किसी और के सामने उसके मिस्टेक्स को बताए। लेकिन बेहतरीन दोस्त इमामों का वही है कि आपस में माहौल ऐसा हो, ऐब बताए बर्दाश्त हो, लेकिन दूसरों के ऐबों को उछालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया और ऐबों को, अपने ऐबों की एक लिस्ट बनाओ, उसे दूर करते चले जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब होगी। और जिस तक ये हदीस पहुँचेगी, ये नसीहतें पहुँचेंगी, उनकी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें पैगंबर इस्लाम की इस वसीयत पर अमल करने की और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इन्ना अहसनल हदीस व अबलगल मौइदा किताबुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लदीन आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi yujibuni hina unadi ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا। खुतबे दुव्वों में एक बार फिर मैं अपने नफ्स के साथ साथ आप तमामी हज़रात को तक्वाए इलाही की दावत देता हूँ। यूनिटी का पैगाम है, यूनिवर्सल मैसेज। इमाम खुमैनी अला रहमा ने 12 रबी अव्वल से लेकर 17 रबी अव्वल के दरमियान जो दिन हैं, उन दिनों को वीक ऑफ यूनिटी अमंग्स मुस्लिम्स के नाम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से लेकर तमाम दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है, इस वीक को मनाया जाता है, यूनिटी की तरफ बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका इम्पैक्ट दुनिया में देखा गया है। पैगंबर इस्लाम की ज़ात बाबरकत के नाम से दुनिया कई जगहों पर, कई शहरों में इत्तेहाद जो मौजूद नहीं था वहाँ पर इत्तेहाद देखने को मिला, और लोगों का दिल एक दूसरे से करीब होते गए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिटी को तबाह कर देती हैं,

कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिटी को ख़त्म कर देती हैं, उनकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनसे अपने आप को हम दूर करने की कोशिश करें। मैं ये देख रहा था जब वो किसी ने मुझे मैसेज भेजा, ये 3D है, 3D का मैंने सोचा ये 3D क्या होता है। जब मैंने जस्तजू की पता चला ये 3D दरहकीकत ये डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस में जो काम होता है, प्रिंटिंग होती है, वीडियो बनाई जाती है, मूवी बनाई जाती है, उसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं, 3D मूवी कहते हैं। तो मेरे जहन में बात आई, 3D ऐसे भी हैं जो यूनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये 3 D's ऐसे हैं जो यूनिटीज़ को नुकसान

हो जाते हैं। आज मुसलमानों में यही हुआ, हम देख रहे हैं किस तरह कितने ट्राइब्स हैं, कितने कबीले हो गए, या कबीले में कितने कबीले हो गए। अगर इंसान काउंट करना शुरू करे, किसी ने अच्छा जुमला का मजरत के साथ, पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि उम्मत मुसलमानों की 73 फ़िरक़ों में 73 सेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, खतीब ने, नहीं, एक फ़िरका 70 फ़िरक़ों में बढ़ चुका है, सारे मुसलमान 73 सेक्ट्स में नहीं बटेंगे, एक एक सेक्ट भी 73 सेक्ट्स में बन गया। क्यों बन गया? डिस्ट्रैक्शन की वजह से, डिसेप्शंस की वजह से ये डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए पैगाम दिया हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे उलमा ने, मराज कराम जो आइंदा का सोचते थे, कितना खूबसूरत जुमरा कहा था शहीद उम्मा ने, रहबर ने, कि तमाम मुसलमान एक बेंच पर बैठे, एक टेबल पर बैठे, और बैठकर अपने एबिलिटीज़ को, अपने कैपेसिटीज़ को, अपने कैपिटल को शेयर करें। चलो ईरान के पास कुछ है, अरब कंट्रीज़ के पास कुछ है, कुछ और कंट्रीज़ के पास कुछ है, बैठे शेयर करें। हम टेक्नोलॉजी देंगे तुम इल्म दो, हम पैसा देंगे तुम सहूलतें दो, आपस में शेयर करें। जब ये कॉमन इश्यूज़ पर गुफ्तगू होगी, अगर होती, तो आज ये मुसलमानों की हालत ना होती। कम से कम बैठकर एक इत्तेहाद का एक सर्किल बनाए, दायरा बनाए, अग्री टू डिसअग्री। मुमकिन है बस चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हों, लेकिन उसके बावजूद हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे बिजनेस में हम अग्री टू डिसअग्री इस फार्मूले पर अमल करते हैं, नहीं, हमारे जॉब पर अग्री टू डिसअग्री, बिस्मिल्लाह। चलो दीन में भी ऐसा कर सकते हैं, यूनिटी की खातिर इंसान कुछ चीज़ों को मानते हुए चले, अगरचे उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस यूनिटी को, पैगाम को पहुंचाने के लिए, रहबर के पैगाम को पहुंचाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड टू हैव आयतुल्लाह आगा महदी महदवी पूर इन बिटवीन अस इन दिस टुडेज़ फ्राइडेज प्रेयर। आयतुल्लाह यहां पर मौजूद हैं, आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनाई मुद्दज़िल्लाह अली के ख़ास रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर आए विजिटेशन के लिए, तमाम कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ से लोगों की हालत को देखेंगे, और हम खुशनसीब हैं, इसलिए मेरे होंठ भी सूख रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं आप आयतुल्लाह के सामने, ही इज़ नॉट ओनली आयतुल्लाह, ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई गाइड इन इंडिया। इंडिया में कई साल ये एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयतुल्लाह खामेनाई इन्होंने खिदमत की है, आज हमारे दरमियान में है। ब्लेस्ड टू हैव अदर डिग्निटरीज इन टुडेज़ फ्राइडेज़ प्रेयर। वी प्रे फॉर देयर हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ इंशाल्लाह। वो इसी तरह दीन मुबीन इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि नमाज जुमा के बाद 10 मिनट आप यहीं पर तशरीफ़ रखिएगा, आगा जान कुछ देर आपसे बात करेंगे, सलाम सुनाएंगे और शुक्रिया अदा करेंगे, और ट्रांसलेशन भी होगा इंशाल्लाह। अगर आपसे गुजारिश है आप मस्जिद में तशरीफ़ रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अजीम हस्तियों के सदक़े में, पैगंबर इस्लाम और छठे इमाम की खिदमत के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी तमाम हाजतों को पूरा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिल मुरसलीन व शफीइल मुदनबीन नबीयन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعه خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يديك
اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

मुनीरा, एक रोशन चराग बना के भेजा है रसूल खुदा को। आप कुरान की आयात में गौर करें तो आप देखेंगे कि सिराज का लफ्ज दो हवालों से जिक्र हुआ है कुरान में, या सूरज के लिए वजअला शम्सा सिराजा, या रसूल खुदा के लिए वसिराजम मुनीरा, एक रोशन चराग बना के भेजा है। लिहाजा अगर आप रसूल खुदा की मिसाल देखना चाहें तो आप सूरज की तरफ देखें, जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, जिसके बगैर हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं होगी, हम सांस नहीं ले सकते, हमारे पास कुछ नहीं होगा, बल्कि ये दुनिया इसमें किसी जानवर, किसी इंसान, किसी पौधे की जिंदगी मुमकिन नहीं होगी। जिस तरह से जाहिरी जिंदगी के लिए सूरज की जरूरत है, इसी तरह से रूहानी जिंदगी के लिए रसूल खुदा के सूरज की जरूरत है। सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो लोग सवाल करते हैं कि क्या रसूल खुदा मासूम थे या नहीं थे, क्या वो बेसत के बाद मासूम हुए या बेसत से पहले भी मासूम थे, क्या अगर वो गुनाहाने कबीरा और सगीरा से मासूम थे तो क्या आम जिंदगी के फैसलों में भी वो कभी खता नहीं करते थे, कभी भूलते नहीं थे, कभी सहव नहीं करते थे, तो ये कैसे सवालात हैं। कुरान तो कह रहा है कि जिस तरह से सूरज आपकी जाहिरी जिंदगी के लिए जरूरी है, रसूल खुदा आपकी रूह और आपके बातिन के लिए सूरज की तरह है। आपके बगैर तारीकी ही तारीकी है। सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैंने अर्ज़ किया, मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ बस कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। ये अजमत है रसूल खुदा की कि वो नूर हैं, वो चराग हैं, वो सूरज की मानिंद हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि रसूल खुदा की अजमत इस दुनिया में किस तरह से नुमाया होती है। वो इस तरह से होती है कि रसूल खुदा के पैगाम और तालीमात को उम्मत जब सीखेगी, समझेगी, उस पे अमल करेगी, तो वो रसूल खुदा का नूर पूरी दुनिया में और कायनात में फैलेगा। इसमें आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। कुरान में इरशाद होता है, असा अन यबअथका रब्बुका मकामन महमूदा। ए रसूल, अनकरीब आपके परवरदिगार आपको मकाम महमूद पर फाइज करेंगे। मकाम महमूद रसूल खुदा के लिए है, लेकिन वो मकाम महमूद क्या है कि उम्मत के लिए वो शफाअत करेंगे और जो गुनहगार हैं उनके दराजात को बुलंद करके अपने पास लाएंगे। या कुरान में इरशाद होता है, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए रसूल, अल्लाह आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। रसूल खुदा को क्या अता होगा जिससे रसूल खुदा का दिल खुश होगा? उनको कोई माल दुनिया और मताए दुनिया नहीं चाहिए, यही कि अहले ईमान, अहले इस्लाम के लिए वो शफाअत करेंगे, उनके गुनाहों को बख्शवाएंगे और अपने साथ उनको जन्नत में ले जाएंगे। यानी रसूल खुदा की अजमत, उनके मकाम महमूद, उनके रिफ़त दरजात के लिए हमारा गुनाहों से दूर होना और रसूल खुदा की तालीमात पे अमल करना ज़रूरी है।

दूसरा सच्चा अमीन के बाद दूसरा अमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी मसलहत के साथ इन तारीखों को साथ जोड़ के रखा है ताकि दुनिया वाले ये ना कहें नबुवत और है इमामत और है। जहाँ नबुवत का तस्केरा होगा वहाँ इमामत का तस्केरा होगा। ये कैसे मुमकिन है बात फूलों की हो और खुशबू की ना हो? ये कैसे मुमकिन है बात सूरज की हो शुआओं की ना हो? ये कैसे मुमकिन है बात पानी की हो नमी की ना हो? ये कैसे मुमकिन है कि बात इंसान आसमानों की करे और फजीलतों की बात ना करे? जिस्म का तस्केरा हो रूह की गुफ्तगु ना हो? ये दोनों साथ साथ चलते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हम कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेस का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में यूं बताया, रसूल की पैरवी करो, कुरान की इताअत करो, इमाम को अपने आप से दूर न करो। जब ये सारी सिफात पर अमल करोगे, कुरान मजीद ये वादा करता है, ये सनद देता है, ये सर्टिफिकेट देता है, ओलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यकीनन, बिल यकीन, इंडीड वही लोग दुनिया और आखिरत में सक्सेसफुल कहलाएंगे, वही लोग कामयाब कहलाएंगे। कामयाबी हम कहाँ ढूंढते हैं? कुरान मजीद ने सक्सेस और कामयाबी को कहाँ छुपा के रखा है? इसे क्रोधना पड़ता है और इसे निकालना पड़ता है। रिसालत की तरफ तवज्जो करें, नबूवत की तरफ, आपके पैगाम की तरफ तवज्जो करें, कुरान की तरफ और विलायत की तरफ, तो सनद क्या मिलेगी, सर्टिफिकेट हमें क्या मिलेगी आज की शब, जब इताअत के रास्ते पर चलते चले जाते हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कितना अच्छा मौका है कि हम इस वक्त इस जश्न में, जो खातिमुन नबीन की विलादत का जश्न है, जो हमारे मजहब का नाम, जो नाम जाफरी है, उसके विलादत का जश्न है, इस जश्न में आखिरी इमाम को इनवाइट करें। आज आपका दिल बड़ा खुश है नहीं? जब खुशी बढ़ती है औलिया की, अनबिया की, तो गिफ्ट्स बढ़ते हैं, तोहफे बढ़ते हैं। बेहतरीन तोहफा हम इमाम के हुजूर से यही तलब करें कि परवरदिगार, आज की शब बना में इमाम अगर तोहफे तो बांट रहा है, तो हमारी किस्मत में ये तोहफा दे देना कि अपने वाली व वारिस का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा देना। हमारा दिल, हमारी आँखें, हमारी अक्ल उसे सोचने, उसे समझने, उसे देखने के लिए बहुत बेचैन है। चलिए इमाम को शामिल करने के लिए इमाम की दुआए हुज्जत और सलामती की दुआ सब मिलकर विर्द करते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

0: गद्दारी की मोहर लगाई जाएगी ताकि दूसरों को सबक मिल सके।
1: तुम्हारी नजरों में वो रहम दिली नहीं रही अब तुलुजा जो पहले हुआ करती थी।
2: शहर बदर की मदद करना समझौते के खिलाफ है सैमुएल, ये उसकी सजा है।
1: वो समझौता अपने भाइयों का कत्ल है, ये कबीले से तुम्हारी बगावत है।
3: ये मेरी हिफाजत में है अबू लहब। जरूरत पड़ने पर तलवार का जवाब भी तलवार से दिया जाएगा।
4: कहीं ये मेरा चचाजाद भाई हमजा तो नहीं जो इतनी बदतमीजी से बोल रहा है और शहर में वो छुपा कर आया है।
3: इसकी वजह सफर की धूल है, वरना मैं दुश्मनों से कभी अपना चेहरा नहीं छुपाता।
4: तुम मुझे अपना दुश्मन कह रहे हो, कहो तुम क्या कहना चाहते हो।
3: यहाँ ना कोई सुनने वाला है और ना ही देखने वाला।
4: मक्का की आंख भी मैं हूं और कान भी हमजा, तुम जो चाहो कह सकते हो। मैं बनी हाशिम वालों की भलाई चाहता हूँ।
3: तुम्हारी भलाई में बुराई के अलावा और कुछ नहीं।
4: जुबान को लगाम तो हमजा, मैंने मोहम्मद और उसके मानने वालों पर पाबंदी का समझौता किया तो सिर्फ इसलिए कि मुझे डर था कि मोहम्मद दूसरों के खुदाओं को मानने वालों को नकार कर इस शहर में चारों तरफ तहलका मचा देगा। छोड़ दो उसे।
5: याद रहे, मक्का में गद्दारों के लिए कोई पनाह नहीं।
4: जिसकी तुम हिफाजत कर रहे हो वो अब इस शहर में नहीं रह सकता।
6: सैमुअल,
4: तुम्हें कल ये शहर छोड़ना होगा सूरज डूबने से पहले।
7: पैगंबर की तबलीग इस्लाम के पिछले 7 वर्षों के दरमियान दूसरे कबीले वालों ने न सिर्फ मुसलमानों को तकलीफें पहुंचाई बल्कि पाक पैगंबर को जान से मारने की साजिश भी की। इस वजह से मोहम्मद और उनके मानने वालों ने मक्का छोड़ दिया और मक्का के नजदीक 2 पहाड़ियों के बीच अबी तालिब वादी में पनाह ली। दूसरे कबीलों ने वादी के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि मक्का से खाना, साजो सामान या कोई

शख्स वहां तक ना पहुंच सके जैसा कि उनके बीच समझौता हुआ था। हम मुसलमानों को हमारे परेशान भूखे बच्चों के साथ उस बंजर वादी में मुश्किलात से जूझते हुए 3 साल गुजर चुके थे।

ओह पैगंबर, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथियों पर सवार फौज का क्या हश्र किया? क्या उनके सारे नापाक इरादे नाकाम नहीं हो गए थे? अल्लाह ने अपने परिंदों के बड़े झुंड को फरिश्तों की तरह भेजा और किस तरह कंकरों की मुसलसल बारिश करवाई और मैदान जंग में उनको सूखे पत्तों की तरह कुचलकर उनका नामो निशान तक मिटा दिया।

0: मैं अब्दुल मुत्तलिब से क्या
1: कहूंगी? कह देना मैं यहीं रहूंगी।
0: अच्छा,
1: देखा तुमने, इतने हंगामे में भी तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सुकून है। जब उस सफर से तुम्हारे अब्बू की कोई खबर नहीं आई, उस वक्त पहली बार मेरे पेट में तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरे दर्द का मरहम बना।

0: भाई ने उसे मेरी हिफाजत में छोड़ा था। उसे अकेले मत छोड़ो, जाओ जल्दी। अबू तालिब, अबू तालिब, तुम यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? ये जख्म तुम्हें कैसे लगा?
1: हाथी सवार फौज हमारे अबू के सारे ऊँट ले गए। ताइफ के बुजुर्गों ने रहम की दरख्वास्त की है।
0: क्या वो इतने नजदीक आ चुके हैं?
1: उन्होंने मोगमास में डेरा डाला है। मैं उदयल और शाहिद के साथ था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अबू कहाँ है?
0: मैं अभी आता हूँ। अबू, मुकाबला करने का कोई फायदा नहीं, हमारे पास ज्यादा सिपाही नहीं है। सारे कबीलों को मिलाकर सिर्फ मुट्ठी भर लोग होंगे। अब्बास अभी अभी आपके ऊंटों की खबर लेकर आया है। अब्राहा के सिपाही सारे ऊंट लूट के ले गए।
2: आमना कहां पर है?
0: वो यहीं रुकेगी। मैंने फातिमा को उनकी देखभाल के लिए कहा।
2: तुम काबा में पनाह लेने वालों का ख्याल रखो और जो लोग जा रहे हैं उन सब की मदद करने को कहो और किसी अभी सीनियन बोलने वाले को तलाश करो।

मेरे अल्लाह, ये घर ये तेरा घर है और हम सब तेरे बंदे हैं, तेरी पनाह में रहने वाले हैं।

वो अल्लाह की मर्जी थी कि हाथी सवार सिपाही मक्का की सरजमीन पर दाखिल नहीं हो पाए और काबा के नजदीक तक नहीं जा सके।

ये तो रहमत है जो अल्लाह का बंदा मूसा अपनी मौत से पहले बनी इसराइल को अता कर गया। उन्होंने कहा अल्लाह सिना की पहाड़ी से आया, सीर की पहाड़ी से ऊपर उठा और फरान की पहाड़ी से चमका। वो हजारों नेक बंदे साथ लाया और फिर उसके दाएं हाथ से एक जोशीला मजहब वजूद में आया। बेशक वो उसके बंधों को चाहता है और वहां मुकद्दस लोग उसके कदमों में बैठे उसकी तकरीर का लुत्फ ले रहे हैं। मूसा एक मजहब लाया जो कौम याकूब की विरासत है।

तुम्हें बता रहा हूँ कि जल्द ही तुम आदम के बेटे को हुकूमत के तख्त पर दाएं तरफ बैठा जन्नती बादलों पर सवार आता हुआ देखोगे।

0: लोगों को खाना खिलाओ। कोई भी यहाँ से भूखा ना जाए। और सब
1: खुश आमदीद बिरादर। सुना है यहाँ रिश्तेदारों और बुजुर्गों की दावत है। तुम अब्बा को नहीं जानते हो क्या?
2: जानने की क्या जरूरत है, मुझे गरीबों के साथ बैठकर बचा खुचा खाना नहीं खाना। हर इज्जत ठुकराऊंगा पर ऐसी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
3: इतनी देर क्यों कर दी? उनका बच्चा भूखा है।
4: मेरी मालकिन ने मुझे जल्दी आने नहीं दिया।
3: मैंने सुना तुम्हारे अब्बू की दावत के चर्चे मक्का के बाहर तक हो रहे हैं।
2: उनके पोते की शान में दावत हुई, तुम खुश नहीं हो?
3: वो इज्जत खरीद रहे हैं एक यतीम बच्चे और उसकी माँ के लिए। ऐसी माँ जिसके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं, उस काम के लिए वो मेरी खादिमा को ले गए। मैंने कहा था तुम दावत में मत जाना।
2: मैं तो वहाँ गया ही नहीं था।
3: गए थे और बेइज्जत होकर लौटे हो।
2: इज्जत खरीदी जाती है, मैं वो बिक्री छोड़ना नहीं चाहता था।
3: कैसा दिखता है वो, अब्दुल्ला के जैसा?
2: मैंने उसे नहीं देखा।
3: किसी ने बताया नहीं कि वो खानदान में किस पर गया है?
2: मैं किसी से नहीं मिला।
3: और बिक्री से तुम्हें यह हिस्सा मिला? इज्जत दी गई अब्दुल्ला के यतीम बेटे और उसके 8 चाचाओं को।
2: अगर इज्जत चाहती हो तो एक बेटा पैदा करो।
3: तुम्हारी नफरत खत्म हो तो पैदा करो ना।
2: बहुत हुआ, क्या नफरत की वजह मैं हूं या फिर तुम्हें तकलीफ इस बात की है कि अब्दुल्ला ने तुम्हें कोई तवज्जो नहीं दी और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ?
3: हाँ, मुझे तकलीफ है क्योंकि बनी हाशिम और बनी उमैया के बीच दोस्ती का जरिया मैं थी और मेरे हिस्से में अब्दुल मुत्तलिब के सारे हसीन और शेरदिल बेटों में से कोई नहीं आया।
2: अगर उस दोस्ती का जरिया तुम हो तो दुनिया ने ऐसी मनहूस दोस्ती कभी नहीं देखी होगी।
3: नफरत करती हूँ तुमसे।
1: सबको अच्छी तरह जांचो और इस बात का ध्यान रखना कि कोई बीमार ना हो। खुजली के आसार दिखे तो सौदा रद्द करो। सिर्फ हट्टे कट्टे मेहनती लोग देखो। पूछो कौन से कबीले के हैं, कोई हुनर आता है या नहीं।
5: रुको, वो बिकाऊ नहीं है। मक्का में कुछ हुआ है क्या?
2: नहीं तो बस आज रबीउल अव्वल का दिन है।
5: मैं अभी आता हूँ।

0: सुनो तो, मेरे माल का क्या हुआ?
1: आसमान में हमने जो देखा वो सिर्फ आग थी।
2: क्या अल्लाह मूसा से आग के जरिए बात नहीं किया करता था?
1: हाँ, पर उस आग और रोशनी में बहुत बड़ा फर्क है। न सिना पहाड़ी दिखी जहां से मूसा आए, न ही फरान पहाड़ी नजर आई। अल्लाह और उसका पैगंबर हमारी नजरों से ओझल है।
2: क्या फरान वो जगह नहीं जहां इब्राहिम की नस्लें बसी? आपको नहीं लगता उसकी रोशनी दिखने से खुशहाली ही वजह थी कि बनी इसराइल यहां रहने आए, ताकि वादा किया गया पैगंबर यहां पैदा हो?
3: इसमें शक नहीं, इस कौम में किसी के घर एक बच्चा पैदा हुआ है, और वो वादा की गई मुकद्दस रूह जो कायनात की शुरुआत से है, अब एक जिस्म में है और हमारे बीच आ चुकी है।
2: तो आपने वो बात मान ली जिसका कोई सबूत नहीं? हमें पता करना होगा उस रात यहूदी घराने में किसके घर लड़का पैदा हुआ है।
4: मक्का में तो यहूदियों की तादाद बहुत कम है।
5: सैमुएल, उस आने वाले के लिए किसी खास वक्त का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हम इंतजार करेंगे कि खैबर के आलिम हमें इसका क्या मतलब बतलाते हैं।
2: अगर वो हमारे दरमियान है तो हम उसकी पुकार सुनने के लिए बेताब हैं। हम जल्दी ही खैबर जाएंगे, पर उससे पहले मुझे किसी भी कीमत पर मक्का में पैदा हुए हर यहूदी बच्चे का पता लगाना है।

0: मोहम्मद?
1: मोहम्मद, ये कैसा नाम हुआ भला? कहां से आया ये नाम?
2: इस नाम में ना तो अल्लाह की बरकत है और ना पुरखों की याद है, ये भला कैसा नाम हुआ?
3: इस नाम में अल्लाह का कोई जिक्र भी नहीं, हमने ऐसा नाम कभी किसी कबीले में नहीं सुना।
4: किसी भी लड़के का नाम आज तक मोहम्मद नहीं रखा गया है।
5: इस नाम का मतलब है तारीफ के काबिल।

0: कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं।
1: सोहिबा, जमीला को उसकी खादिमा चाहिए।
2: सोहिबा अभी अभी वापस आई है।
1: सोहिबा,
2: दूध पिलाने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता।
1: वो अपने घर के काम और अपनी मालकिन को छोड़कर यहाँ दूध पिलाने चली आई।
2: वो बच्चा आपका भतीजा है
1: और जमीला मेरी बीवी।
2: रहम कीजिए, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए।
1: कितने दिन हो गए, अभी तक यही चल रहा है। सोहिबा है कहाँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? सोहिबा, आमना, जमीला को गवारा नहीं कि उसकी खादिमा उस बच्चे को दूध पिलाए।

0: क्या कर रहे हो तुम? मरने का इरादा है क्या?
1: चुप रहो,
2: थोड़ा पानी दे दीजिए, हम बेसहारा और प्यासे हैं।
1: दो पड़ाव आगे वहाँ एक

0: हुआ है।
1: हमारा जागर मर गया, हम तपती गर्मी से जल रहे हैं।
0: हमें देर हो रही है।
1: रुके, कुएं तक पहुंचने से पहले बस एक घूट। प्रेम कीजिए, आके देखिए हमारी हालत क्या हो गई है माली।
0: चलो आगे।
1: शुक्रिया,

0: कहाँ जा रहे हो?
1: मक्का। मेरे बच्चे की माँ का दूध बेचकर हम सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम करने जा रहा हूँ।
0: तुमने देर कर दी, वहाँ नाम रखने की रस्म हो गई और दाई माओं का बाजार अब उठ चुका होगा। लो ये रख लो। इस रेगिस्तान में तुम्हें पानी की ज्यादा मशक्कत लानी चाहिए थी।
1: अब बहुत नेक इंसान है।

0: मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है।
1: ये हमारी जुबान नहीं समझता।
0: वैसे तुम भी कहां समझते हो। तुम्हारा भतीजा भूखा है और अगर दाई मां नहीं मिली तो भूख से उसकी मौत भी हो सकती है। तुम्हारी खादिमा उसे दूध पिला सकती है और तुम उसे मना कर रहे हो। हम दूध की कीमत दे सकते हैं या फिर तुम अपनी खादिमा हमें बेच दो।
1: वो खादिमा मैंने अपनी बीवी को तोहफे में दी है। अब तोहफा ना वापस लिया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है।
0: लानत है।
1: अब जमीला आपकी बहू है, इसे बुरा मत कहिए। अब तो ये आपके ही खानदान का अजीज हिस्सा है।
0: मैं इस पर इल्जाम नहीं लगा रहा, अपने ही खून पर लगा रहा हूं। बनू उमैया ने तुम्हें बनी हाशिम से खरीदा और इसे तुम्हारी बीवी बना दिया, या यूं कहें तुमने खुद अपना कबीला उन्हें बेच दिया। अगर तुम ना चाहते तो नहीं होती ये शादी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि बनू उमैया तुम्हें सरदार बना सकता था।
1: मेरे कबीले से आखिर मुझे मिला क्या है?
0: काबिल को हाबिल से इतनी दुश्मनी नहीं थी जितनी तुम्हें अपने भाइयों से है अबू लहब।
2: खैबर शहर।

0: मुझे किसी ने दाइमा नहीं चुना।
1: और भेड़ का ऊन बेचने के बाद मुझे इतनी ही रकम मिली,
0: इतने में से गुजारा कैसे होगा?
1: पता नहीं, ये कमजोर जानवर भी वापस ले जाने लायक नहीं रहा। परेशान मत हो, मैं इसे बाजार में बेच के आता हूँ, कुछ न कुछ रकम तो मिल ही जाएगी।
0: इसे बेचकर एक सिक्का भी नहीं मिलेगा और हमारी बेटी का दिल भी टूट जाएगा।
1: कोई दूसरा रास्ता नहीं है अलीबा, चल जा।
2: मेरी मालकिन को खुश करना बहुत मुश्किल है और अगर उन्होंने तुम्हें चुन लिया तो अच्छी खासी रकम देंगी। चलो तुम दोनों अब।
3: इसे बेकार में मत घुमाओ, तुम इसे और कमजोर कर दोगे। ये तो जख्मी भी है। मैं कीमत सिर्फ इसकी गोश्त की दूंगा और इसे जिबा करने के पैसे नहीं लूंगा। तुम चाहो तो खाल रख सकते हो।
4: तुम अपनी मालकिन से कहो ना मुझे चुने, मैं गरीब और बेसहारा हूँ।
5: आगा।

0: जमी क्या करे, आ रहा हूँ। जमी जमीन, मत बैठ, जमीन। जमीन, चल चले, चल, आजा, आजा, आजा, उठो, उठो, आजा।
1: वो डर गया है, उसे सुकून से बैठने दीजिए।

आप खाने में शरीक नहीं होंगी? मुझे मेहमानों के आने का इंतजार था। घबराइए मत, घर वाले इसका ख्याल रखेंगे। आइए, खुशामदीद। आइए ना।

0: मेरे ये आंसू तो खुशी के आंसू है कि इसने दुख भी ना कबूल किया, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मुझ में दूध नहीं था, मगर इसके होंठ छूते दूध उतर आया।
1: इसकी खनक कहती है ये खरा सोना है और ये सिर्फ उसको मिलेगा जो एक बच्चे को ढूंढ निकालेगा। उस बरकती बच्चे के कंधे पर एक खास निशान है।
2: इस तपते सूरज के बंजर शहर में माएं अपने बच्चों को पालने के लिए अक्सर पास के गांव से आई हुई दाई माओं को दे देती हैं। हम लोग उसे ढूंढ लेंगे।
1: उसे शहर के अंदर और बाहर अच्छी तरह ढूंढो। लो ये भी लो,
3: जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी ढूंढ के लाओ, जाओ।

0: आमना, मैं जानता हूं मोहम्मद से जुदा होना इतना आसान नहीं है।
1: मेरा दिल नहीं मानता बाबा, मोहम्मद को ले जाने की बजाय क्या वो यहां नहीं रह सकती?
0: उस दाई माँ का शौहर है, बच्चे हैं, वो यहाँ कैसे रह पाएगी?
1: काश आप मुझे भी इसके साथ जाने की इजाजत देते।
0: तुम्हारी भलाई के लिए और मोहम्मद की भलाई के लिए बेहतर है इसे अकेले ही जाने दो। तुम्हें किस बात की फिक्र है? हम बहुत खुश नसीब हैं। मैं हलीमा के खानदान को जानता हूँ। देखो, मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा तुम अक्सर जाकर उससे मिल सको।

0: मोहम्मद सिर्फ 2 महीने के थे जब उनका सफर शुरू हुआ और हम सब के लिए ये खुशी की बात थी, मगर आमना के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था।
1: दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे बच्चों को बुरी नजर से, शैतानी रूहों से दूर रखेंगे।

0: थक गए होगे ना?
1: हाँ बिरादर, बहुत ज्यादा।
2: क्या नाम है इसका?
3: मोहम्मद।
1: चलो सामान उतारो।
0: चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो चलो, तो भीग जाओगे। चलो चलो

0: साफ कपड़े पहनो। जितने भी पुराने कपड़े हैं उन्हें जला दो।
1: जी जरूर।
0: पिछले साल का बचा हुआ सारा अनाज जला दो। अपने जानवरों को शहर के कुओं के पास मत जाने दो। उनके लिए पानी शहर से बाहर वाले कुओं से लेकर आओ और वही पानी उन्हें पिलाओ। मक्का के सारे कारोबारी अपने गोदाम खोल दें और उनके पास जो भी अनाज है वो शहर के सभी लोगों में बराबर तकसीम कर दें।
2: मैं कुछ कर सकता हूँ?
0: तुम गेहूं लाने ताइफ चले जाओ। अगर कोई बीमार शख्स दिखे तो उसे बाकी लोगों से अलग कर देना। और हाँ, देखो कितने ऊंट और घोड़े तैयार कर सकते हो।
3: थोड़ा गेहूं और कपड़ा लाया हूँ। शुक्रिया मर्जाना।
0: खाना और कपड़े ये आजकल सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसका मुआवजा कैसे चुकाऊंगा?
3: मुआवजे की कोई जरूरत नहीं। आप अपना सब कुछ अपने यहूदी लोगों के दरमियान बराबरी से बांट रहे हैं। ये इब्राहिम के मुहाफिज़ काबा का इंसाफ है जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया।
0: हमारे बीच कोई फर्क नहीं है। वो हमारे बिरादर हैं, इसी सरजमी के बाशिंदे, और यहाँ साथ साथ रहने के हक ने हमारे नसीब भी एक कर दिए हैं।
3: ये तोहफा है आपकी नेकी और ईमानदारी का। इस शहर के तमाम बच्चों, खासकर उस बच्चे के लिए जो फरान की तारों की बरसात वाली रात पैदा हुआ था। मेरे ख्याल से आप उसका नाम जानते हैं।
0: कुछ नहीं जानता मैं। तुम अपने माल की कीमत बता दो, मैं वो रकम चुका दूंगा।
3: जानते हैं आप,

मोहम्मद को कल हलीमा के यहां जाना होगा। यह अकेला नहीं जा रहा, मक्का के तमाम बच्चे भी इसके साथ जाएंगे।

0: खाना शुरू करें। तुम जानती हो मैं मोहम्मद से कितना प्यार करता हूं।
1: मेरी सारी उम्र जुदाई में गुजरी। पहले मेरे शौहर मुझे छोड़ गए अब्दुल्ला, और अब मेरा बेटा जा रहा है मोहम्मद। बाकी सारी माएं भी तो अपने बच्चों के साथ वहां जा रही हैं। रहम कीजिए, मुझे भी उसके साथ जाने दीजिए।
0: मोहब्बत में तो दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। उसकी बेहतरी के लिए फिलहाल उसे गुमनाम ही रहने दो आमना।
1: जो बच्चा खुद सबके लिए रहमत लाए, उसके खुद के मुकद्दर में इतनी जुदाई क्यों है?
0: मोहब्बत एक अजीब पहेली है। कोई तो जरूर है जो उसे हम दोनों से ज्यादा चाहता है।

0: कौन सा बच्चा है?
1: वो लड़का जो सफेद लिबास में है।
2: क्या चाहिए तुम्हें?
3: हम बेसहारा है, थोड़ा खाना और पानी मिल जाए तो।
2: साइमा, इन लोगों को पानी दे दो। अरे बच्चे को क्यों हाथ लगा रही हो?
3: शफा, हमारे खेमे यहाँ नजदीक ही है।
2: पानी पियो और भागो यहाँ से।
3: मेरा शौहर बीमार है, ये वहाँ जाके उन्हें ठीक कर देगा।
2: मैंने कहा ना जाओ।
1: तुम जो भी कीमत मांगोगी हम देंगे, बस शफा चाहिए।
4: अब एक लफ्ज भी कहा तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
2: भागो यहाँ से, जाओ, निकलो, जाओ यहाँ से, जाओ,
1: भागो, जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं।
4: जाओ, अपने अब्बू को जल्दी बुलाओ।

0: क्या जख्मी है?
1: जेन, क्या हुआ जेन?
0: मैं मोहम्मद को मक्का ले जाऊंगा, उसे तैयार करो, सुबह होने से पहले निकलना होगा।

0: मैंने सख्त निगरानी रखी, कभी नजरों से दूर नहीं जाने दिया। हलीमा भी किसी औरत को घर में घुसने नहीं देती थी।
1: किसी को उसके आने की खबर ना हो, उन्हें खाना तैयार करने को कहो, मैं उसे एक महफूज जगह पर ले जाऊंगा।
2: और आमना?
1: उसे मेरे जाने के बाद बता देना।
2: हारिस का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा।

बरसों की जुदाई के बाद माँ और बेटे के बीच का प्यार खुद ब खुद नजर आ गया। जब वो दोनों अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए मदीने के सफर पर निकले थे,

0: वो कबीले वाला एक बच्चे को रात के अंधेरे में घोड़े पर यहां मक्का लेकर आया।
1: उस बच्चे का नाम पता चला?
0: मोहम्मद।
1: मोहम्मद, मोहम्मद।
2: झरना सूख गया है, झरना सूख गया है।
3: ये तो बुरी खबर है।
4: मोहम्मद ने पूछा, क्या वो लोग पत्थरों से पानी मांग रहे हैं?
5: अल्लाह ने इब्राहिम की नस्ल को इस खुश्क जमीन में पानी दिया और उन लोगों को पत्थरों से काबा बनाने को कहा और ये भी कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। पर इस सरजमीन के लोगों ने अल्लाह की इबादत के बजाय सिर्फ और सिर्फ काबा को ही देखा। वो अपने तरीके से इबादत करने के लिए काबा के पत्थर अपने साथ ले गए और इस तरह इब्राहिम के अल्लाह और उनके मजहब को भूल गए।
4: मोहम्मद ने कहा, फिर झरना बहना बंद हो गया।
6: पानी चुरा तू रहे, माफी, गुलाम होके तो पानी चुराना था। मेरी इतनी जरूरत, हम खुश हो इसकी, इसको इतना मारो कि किसी और गुलाम की हिम्मत ना हो।

0: मेरी आंखों की नूर, ओह आमना बेटी, खुदा का लाख लाख शुक्र कि इतने बरसों बाद तुम्हारे दीदार का मौका मिला। जहे नसीब,
1: दूरियों की वजह से ही आपसे मिलने की तमन्ना थी।
0: तुम्हारी आंखें देखकर मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई। मोहम्मद, मेरी जान।
2: खुशामदीद आमना।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: इस्तग़फ़ार। आओ बेटा, अंदर आओ। बच्चों, ये है तुम्हारा प्यारा मेहमान मोहम्मद, इसका ख्याल रखना।

जानते हो मोहम्मद, जब मैं बच्ची थी तब मैं आसमान को छूना चाहती थी पर नहीं छू सकी। मैं चाहती थी कि मैं दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर लगे उस फल तक पहुंच सकूं, जो ऊपर

0: आसमान के पास हो, जैसे कि वो सेब। जब मैं पहली बार तुम्हारे अब्बू से मिली तो वो दरख्त के उस ताज़े फल की तरह थे जो बुलंदी पर था, जहाँ किसी का हाथ ना पहुँचे। सुनहरे बाल, खूबसूरत, मासूम और इज्जतदार चेहरे पर धूप जैसी चमक। अल्लाह ने इस आमना की ख्वाहिश कबूल की और उसे अब्दुल्ला अता किया। हमारा साथ सिर्फ 2 ही महीने का था, लेकिन वो लम्हे मेरे लिए किसी मीठे ख्वाब की तरह थे।
1: मोहम्मद ने कहा, माँ, मैं आपके लिए सेब लाया हूँ।

0: यह लंबा सफर तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं।
1: नहीं, अब मैं बेहतर हूँ। मुझे तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मैं मोहम्मद को उसके खानदान तक ना पहुंचा दूं।
0: अब मैं यहाँ तुम्हें रुकने को नहीं कहूंगा, तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मोहम्मद बेटे, ये तुम्हारा दूसरा घर है।
2: मोहम्मद ने कहा मदीना बहुत याद आएगा।
0: हमें भी तुम बहुत याद आओगे मोहम्मद। सफर मुबारक हो।
3: काफिला रवाना हो, काफिला रवाना हो।

0: हमें मोहम्मद और आमना से कुछ खबर मिलनी चाहिए। अबूजान, मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें मैं एक घूंट पानी को तरस रहा था, पर उसके बाद मैंने मोहम्मद का बेजान जिस्म और होंठ पानी में डुबो दिए। मैं इसकी ताबीर नहीं समझ पा रहा हूं।
1: पानी,
0: मुझे इसका माकूल जवाब नहीं मिला। जब तक जवाब नहीं मिलता, चैन नहीं आएगा।
1: ख्वाब की ताबीर है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। जल्दी जाओ।

0: अब्दुल्मुत्तलिब के बेटे का इस्तकबाल है।
1: तुम सब इतना घबराए हुए क्यों?
0: हम लोग समझे डाकू लुटेरे लौट आए।
1: डाकू लुटेरे?
0: वो सब चोर नहीं थे। कल कुछ लोगों ने कारवां पर हमला किया मगर उन्हें सामान नहीं लूटना था।
1: तो क्यों आए थे?
0: उन्हें तलाश थी एक माँ और एक बच्चे की।
1: मोहम्मद, आमना, वो दोनों कहाँ पर हैं?
0: रास्ते में आमना की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो हमें उन्हें पास के अबुआ गाँव ले जाना पड़ा।
1: उन हमलावरों से क्या कहा तुमने?
0: उन्हें गांव के बारे में कुछ नहीं बताया, कह दिया वो मदीने लौट गई।
1: आपका शुक्रिया, चलो जल्दी।

फिक्र मत करो, आओ। बारिश ऐसी हो रही थी जैसे कभी रुकेगी ही नहीं। आखिरकार वो थम गई। अब सितारे चमकने लगे थे, बेशुमार शौख जगमगाते टिमटिमाते। हालांकि सुबह होते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वैसे ही ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती ही बरकरार रहेगी, ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह, जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहां तक आ रही है।

0: के पाँव गुजर गई। मोहम्मद बीमार है, हमारा मोहम्मद।
1: मोहम्मद क्या हुआ मोहम्मद को?
2: माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके।
0: इन्हें बुखार हो गया है आका।
1: मोहम्मद
0: बुखार बहुत तेज है, किसी भी तरह कम नहीं हो रहा आका।

जब हमारी इस कौम ने खुद को बसाने के लिए अल्लाह से जमीन मांगी और जब वो जमीन उन्होंने उसे अता की थी तो क्या अल्लाह ने कहा था कि ये सारी जमीन अब तुम्हारी है, कि इस जमीन पर तुमसे पहले कोई नहीं रहा करता था? गौर से सुनो, हमें अभी अभी मक्का से बहुत बुरी खबर मिली है सैमुअल। यहूदी सौदागरों को मक्का में कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे हमारी कौम को फायदा होगा? हमारे मजहब में कारोबार का मतलब जाति फायदा उठाना नहीं, बल्कि पूरी कौम को बुलंदी पर ले जाना और उसकी शान बढ़ाना है। और यह जरूरी है कि हम दूसरी कौमों से समझौता करें। तुम्हारे जुनून की आग कौम को जलाए उससे पहले उसे बुझाना होगा। हमें सिर्फ ये आग ही नहीं बुझाना होगा, बल्कि आग भड़काने वालों को भी खत्म करना होगा। जो आसमान की तरफ पत्थर फेंकता है, वो पत्थर उसी के सर पर गिरता है। जिस अल्लाह का तुम्हें कोई खौफ नहीं, उसके मुकद्दस कपड़े पहनने का भी तुम लोगों को कोई हक नहीं।

दूसरे खुदाओं को मानने वाले अनजाने में ही बुत परस्ती के रस्म और रिवाज के साथ जोड़कर काबा का तवाफ करते हैं, पर हम लोग आज भी हज की रस्म उसी तरह अदा करते हैं जैसे पैगंबर इब्राहिम किया करते थे, यहां मुकद्दस पत्थर को छूकर।

मेरे लिए मरना आसान नहीं है। बेटे मोहम्मद, जाओ घर के सभी लोगों को यहां बुला लाओ।

अपने दिल पर बोझ मत बढ़ाइए, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। और मोहम्मद की फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए, वो हम सभी की आंखों का तारा है।

0: अब्बूजान, अब्बूजान, गर्म दूध है, पी लीजिए, आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी।
1: कभी ये बच्चा मां के दूध से महरूम था।

अबू तालिब, इस नायाब बच्चे का बहुत ख्याल रखना। इसे अपने अब्बू की शफकत नहीं मिली, ना ही इसे अपनी मां का पूरा प्यार मिला। इसे अपने दिल का टुकड़ा समझना, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह।

0: को मत बेचो, बच्चे बच्चे को छोड़ दो।
1: नीचे बेचो। 400 सिक्के, 500,
2: 600, 650
1: और बोली लगाओ।
0: तो बाले मेरे आका, वो सोएबा है, उसने परसों आपकी खिदमत की है।
3: सौदा सौदा होता है, पूरा पैसा सूद समेत ले आओ और अपनी बीबी वापस ले जाओ।
0: इस वक्त हमारा मेरा जानवर बीमार हो गया।
3: मैं नहीं जानता ये बीमारी या जानवरों को, मैं तुम्हें जानता हूँ और जानता हूँ इसी से मुझे मुनाफा मिलेगा। बाहर निकालो इसे।
0: मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए।
4: मोहम्मद ने चाचा को सलाम कहा। मोहम्मद,
5: इतने बड़े हो गए तो।
4: मोहम्मद ने कहा, बच्चों की खातिर सोएबा को छोड़ दीजिए।
5: इसने मुकर्रर वक्त में दुगनी रकम लौटाने का वादा किया था, उसी वादे पर बीवी को गिरवी रखा था।
4: मोहम्मद ने कहा, उनकी बीवी को आजाद कर दीजिए, बाद में वो रकम चुका देंगे।
5: वो कैसे? वो तो नाकारा है। जब वो मेरे यहाँ काम करता था तो उसके बीवी बच्चों की मदद मैं करता था, फिर उसे लालच हो गया और कारोबार के लिए कर्ज लिया। उसकी बदनसीबी की कीमत मैं क्यों चुकाऊं?
4: मोहम्मद ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा, और अगर नहीं चुका सका तो मैं आपके यहां काम करूंगा।
5: तुम और तुम्हारी जमानत कौन देगा? अबू तालिब,
6: अपना मोहम्मद तो ईमानदार है ना, इसकी ईमानदारी ही इसकी जमानत है। आज बहुत मुबारक दिन है, मोहम्मद ने इस घर में कदम रखा है। तुम्हारे भतीजे ने पहली बार तुमसे फरमाइश की है, उनसे फौरन नीलामी रोकने के लिए कह दो। इसमें कोई हिचकिचाहट क्यों?
5: इसकी बीवी को ले आओ।
6: सोएबा मेरी खादिमा हुआ करती थी, उसकी आजादी के बदले हमें मोहम्मद के ज्यादा दीदार हो सकेंगे। ये मुनासिब वादा मंजूर है।
5: तुम अपना वादा मत भूलना।
4: मोहम्मद ने कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा।

0: पर लड़का हुआ है। कहाँ है वो लड़का? क्या इतने दूर में तेरी तीसरी बेटी को देखने आया हूँ?
1: कम से कम इसे तो जिंदा रहने दो, ये आपकी बुढ़ापे का सहारा मैंने दी।
0: छोड़ मुझे, तू चाहती है कि मैं इसे सारी जिंदगी बैठा के खिलाऊं, फिर ये किसी की गुलाम बन जाए या अपने शोहर के कबीले के काम आए?
1: मैं उसे मेरे हिस्से में से खिला दूंगी, इसे जिंदा रहने दो, इसे मत मारो।
0: तू बहुत बड़ी जिल्लत है, दूसरी और के लड़के पैदा करती है, उन पर फक्र करती है कि उन्होंने जंग के लिए जवान या मजदूर दिए।
1: बच्ची को जीने दो, रहम करो।
0: तूने लड़का पैदा नहीं किया तो तू भी

मोहम्मद ने पूछा, ये आपकी बेटी है ना? बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। देखिए इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। इसकी उम्र खूब लंबी हो और इसके बच्चों के जरिए आपकी आंखों का नूर हमेशा कायम रहे। कितने खुशनसीब हैं आपकी।

0: Abdulluza? Abdulluza?
1: मक्का में तुम्हारा क्या सामान छूट गया जो तुम्हें तुम्हारे काफिले में नहीं मिला?
0: एक ही चीज रह गई थी, मोहम्मद का वादा, जो एक मां की रिहाई के बदले दिया था।
2: काफिला बहुत बड़ा है, मैं तो गिनते गिनते थक गई।
3: मैं अंधा नहीं हूं।
2: मोहम्मद को वो अपने साथ ले जा रहा है।
3: क्या फर्क पड़ता है?
2: पहले ही अपने अब्बू से कहकर तुम्हें मोहम्मद को अपने पास रखना चाहिए था, भाई के पास नहीं। फिर तुम इतने बेबस नहीं होते।
3: बस भी करो जमीला।
2: देखो, तुम यहाँ कमरे में बैठकर रंग बिरंगे लिबास में खुद को कुरैश का बुजुर्ग नहीं समझ सकते। अगर वो इज्जत का नाम है तो वो अबू तालिब के पास क्यों है?

0: ये जरूरतमंदों का मुहाफिज क्या ये आपका बेटा है?
1: कौन, मोहम्मद? वो तो हमारे साथ हमारे बेटे की तरह रहता है, दरअसल वो मेरा भतीजा है।
0: आपके भाई का बेटा, ये एक और निशानी है, वो इस दुनिया में अकेला है हिफाजत अल्लाह में।
1: आप कहना क्या चाहते हैं?
0: खुदा ने हमारे पैगंबर को खुशखबरी दी थी कि वो हमें एक और पैगंबर अता करेगा जो हमेशा हमारे साथ रहेगा।
1: तो वो पैगंबर है कौन?
0: वो हमारी तरह के इंसान है लेकिन पाक और सच्ची रूह वाला। वो हमारे पैगंबर के लिए गवाही देगा। रुको, वो हमारे लिए खुशियां लाएगा। वो एक सच्ची रूह है जिसे दुनिया कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये दुनिया न उसे देखेगी न पहचानेगी, मगर तुम उसे जानते हो। वो तुम्हारे बीच रहेगा जब वो पाकीज़ा रूह तुम्हारे सामने होगी।

0: वो तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाएगा, क्योंकि वो अपने अल्फाज नहीं बोलता, वो सिर्फ वही बोलेगा जो कुछ उसने सुना है, वही तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की खबर देगा।
1: मोहम्मद ने पादरी को सलाम किया।
0: खुश आमदीद नौजवान, सलाम।

0: मोहम्मद ने पूछा, आप उनके साथ वैसा सुलूक क्यों नहीं करते जैसा आप अपने लिए चाहते हैं?
1: यह हमारी गलती है। यहाँ अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए हमें मुकर्रर किया गया है, जबकि बेसहारों को नजरअंदाज करना बड़ा गुनाह है। और आपके अल्फाज हमारे पुरखों की कही बात पर बड़ी धूल साफ कर रहे हैं। ईसा ने भी यही कहा, लोगों से वैसा सलूक करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। ये एक और निशानी है नौजवान, कि आपने इस गिरजाघर की अजमत को नजरअंदाज करके इंसान और उसकी तकलीफों पर तवज्जो दी।
0: आपने फरमाया अल्लाह की यही मर्जी है।
1: बिल्कुल यही अल्फाज ईसा मसीह ने कहे थे, दूसरी जबान में, हमारी तालीम का पहला सबक है ये जानना कि खुदा सिर्फ एक और अजीम है। वो खुदा आपको कहां पर मिलेगा?
0: आपने जवाब दिया, टूटे हुए दिलों में।
1: कहिए उस पर रहमत और बरकत अता हो जो खुदा के नाम से यहां आएगा। दुनिया के इस इलाके में खुदा के पैगंबर किसी भी और जगह से कहीं ज्यादा है। मैंने दुनिया में ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने पैगंबर खुद ही चुनते हैं और फिर वही उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग जुबान से तो पैगंबर मानते हैं पर उनके दिलों में डर है, उन्हें छोटे मुनाफों की आदत है। वो डरते हैं उनकी दुनिया डगमगा जाएगी कहीं कोई पैगंबर आकर उनके पिछले सभी पैगंबरों और उनकी किताबों को मानने से इनकार न कर दे। वो नहीं जानते कि वो खत्म नहीं बल्कि मुकम्मल करेगा। उसके आने की कई निशानियां हैं।
0: उनमें से कोई एक निशानी बताइए।
1: क्या आपने उनके कंधों के बीच कोई निशान देखा है? बताइए।
0: देखा है।
1: जानते हैं क्या है वो? निशानी है पैगंबर होने की। एक बात सुनिए, आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, सफर यहीं पर रोक दीजिए, मुल्क शाम मत जाइए, मक्का वापस लौट जाइए और उनका बहुत ख्याल रखिए।
2: और काफिले से जो भी मिला वो तुम्हारा है। उन्हें बसरा की जमीन छोड़नी पड़ेगी ताकि हुकूमत की फौजें उनकी हिफाजत ना कर पाएं। तुमने कहा कि ये कबीलों का झगड़ा है और कोई भी जिंदा ना बचे। वैसे इसके अलावा तुम उनसे और क्या चाहते हो?
3: हमें अपने गुमशुदा को निजात दिलाना है।
4: निजात? 12 बरसों की तलाश के बाद निजात? अब जाकर मुकाबले का वक्त आया है। मैं सिर्फ अपने लोगों की निजात के बारे में सोच रहा हूँ।
3: और ये जान लो, अल्लाह ने मूसा से कहा था, हम पैगंबर भेजेंगे जो तुम्हारे भाइयों में से एक होगा, उसका पैगाम सुनना और उस पर अमल करना।
4: वो हम में से नहीं है, समझ रहे हो तुम?
3: यही तो फिक्र है।
2: तुमने तो कहा था कि सिर्फ अरब लोग ही उनके मुहाफिज हैं, मगर यहाँ रोमन फौज भी है, ये ताकतवर और तजुर्बेकार है।
3: इस तरह तो हम कहीं

0: Can I hit a hanger?
1: हमें और आदमी चाहिए, ये जंग खत्म होने के बाद मिलेगा।
2: ये बात हमारे दरमियान ही रहे। तुम तीन तीरंदाजों के साथ फौरन आगे जाओ और कुछ किराए के आदमी लाओ।
3: अगर कोई नहीं आया तो
2: पहाड़ी की तरफ हमारा इंतजार करना, समझे? अब जाओ।
4: याद रहे, काफिले के पीछे साय की तरह उनके साथ रहना। चलो आगे बढ़ो।
5: बाहिरा ने कितना उम्दा मंसूबा सोचा कि हम इबादतगाह से काफिले के बाद निकलें ताकि मोहम्मद को महफूज रखा जा सके।

0: इस वीराने में भटकता घोड़ा कैसे आ गया? वो अपने सवार को कहाँ छोड़ आया होगा?
1: कोई घोड़ा अपने सवार को छोड़कर कभी नहीं जा सकता, जब तक कि सवार खुद उसे न छोड़े।

0: मोहम्मद ने बच्चों से कहा, आओ। मेरे पास आओ।
1: कबीले के सारे आदमी कहाँ हैं? समंदर गए हैं?
2: नहीं,
1: ये जख्मी है, सफर नहीं कर सकता। क्या हमें मदद मिलेगी?
3: जो भी हमारे पास है इनमें बांट दो। गदीर तक पहुंचने की खुराक है हमारे पास।

पर रहम कर, हमारी फरियाद सुन, हमारी भूख देख। ओ जरा इश्क़ खुदा हम पर रहम कर। वो औरत और उसके बच्चे तेरी नाराजगी के लिए कुर्बानी देने जा रहे हैं। उम्मीद है तेरी नजर करम हम पर फिर से होगी। अब हम इन कुर्बानियों को समंदर में फेंक देंगे ताकि वो फिर से हमारा इनाम दिला सकें। फरियाद सुन, औरतों की फरियाद सुन, सुन ले उनकी फरियाद, उन पर रहम कर, दरिया कुर्बानी।

बंदर की कुर्बानी है, उसे दूर हटाओ, दूर हो जाओ, वरना जरा नाराज हो जाएगा।

0: मोहम्मद पैगंबरे अल्लाह ने तुम सबको अल्लाह का ये पैगाम साफ और बाआवाज़े बुलंद भेजा है। तुम सभी इस पैगाम को बड़े गौर से सुनो।
1: पैगाम है अल्लाह पैगंबर को, उन पर लाखों सलाम और दुआ हो के मुसलमानों से ताल्लुक तोड़ने का समझौता अब रद्द होता है। वही समझौता जिस पर कुरैश के बुजुर्गों ने दस्तखत किए थे।
2: ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे सुन, परसों पहले कबीलों के बीच किया गया समझौता रद्द करने के लिए नहीं किया गया था। कुरैश कबीले के अपने बुजुर्ग हैं और उनके अपने खुदा हैं।
0: कहा है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके।
2: लूत, उज़ा और होबल ने इन लोगों पर रहमत भेजी और इनकी हिफाजत की, पर मोहम्मद के अल्लाह ने उसके मानने वालों के लिए सिवाय गरीबी, भुखमरी और मौत के क्या भेजा। ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटों, क्या मोहम्मद उसके अल्लाह से अपने लोगों के लिए यही चीजें मांग रहा है? तुमने इस चौराहे पर जवान और बूढ़े, औरत और बच्चे सभी को बुलाया है कुरैश के उस समझौते को रद्द करने के लिए। अब यहां सबके बीच ये बताओ, तुम्हारे पास सबूत क्या है? तुम्हारी बात में सुनने लायक क्या है? और क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो समझ लो अबू तालिब, ये समझौता तो अब तब ही रद्द होगा जब मैं चाहूंगा, जब कुरैश के सभी बुजुर्ग चाहेंगे।
0: वरना वादी में रहने वालों के लिए मक्का का सिर्फ एक ही जवाब होगा, जंग और तलवार।
1: आखिर तुमने किस समझौते पर आज ये जंग का परचम थाम लिया है? खून से अपने हाथ रंगने से पहले तुम अपने बुजुर्गों से ये क्यों नहीं कहते कि वो खुफिया तरीके से लिखा दस्तावेज तुम्हें भी दिखाएं? शायद तुम सबको इन लोगों पर इतना यकीन ही नहीं है। अल्लाह ने उसके पैगंबर को ये पैगाम दिया है कि अब वो समझौता नहीं बचा, उसको दीमकें खा गई। अगर ऐसा नहीं है तो साबित कर दो।
0: ठीक है, मैं अभी साबित करके दिखाता हूं।

0: पौधे को सिर्फ अल्लाह के नाम से बचा हुआ है।
1: मुकाबला नहीं कर सका
2: है वो अकेला अल्लाह जिसने उसके मानने वालों को महफूज

0: सब जादू है। खुफिया और वन समझौते के बारे में सिवाय जादूगर के और कौन जान सकता है?
1: लोग मूसा के असा को भी जादू की छड़ी कहते थे, वो उन पर ईमान नहीं लाए और उनको जादूगर कहा, जबकि वो अल्लाह के पैगंबर थे।
2: सिवाय एक अल्लाह के हर एक जिंदा चीज को फना होना है।
3: सुनिए हजरत, आप इसे अल्लाह की दावत की निशानी समझिए, अल्लाह की तरफ जाओ जो सिर्फ और सिर्फ वाहिद है, लाफानी है।
4: मुझे कोई समझौता नजर नहीं आता जिसका मैं वफादार रहूं।

0: ये उनकी जीत की निशानी है अबू सुफियान। तुम बिल्कुल मत हिचकिचाओ, तुम्हारे पास अब भी ताकत है।
1: जब तक अबू तालिब मोहम्मद का निगहबान है, हम कुछ नहीं कर सकते।